संत चोखामेळा की भक्ति रचना आप सुन रहे थे उदयन काळे के स्वर में। कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है मालती पांडे ने।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी ने गाई हुई एक भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी ने गाई हुई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त करते हैं।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: इनीग राग बागेश्री खयाल विलंबित एक ताल कौन गत बई ध्रुतीन ताल बलमा मोरे।
1: यू आर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय श्री दत्तात्रेय वेलनकर। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री शशिकांत कुलकर्णी। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट नाउ लिसन टू राग बागेश्री ख्याल विलंबित एक ताल कौन गत भई ध्रुत तीन ताल बलमा मोरे।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग ललित में सितार वादन. आज के कलाकार हैं दीपांकर दत्तो. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रुद्र नारायण कल्याणी. तो ये सुनते हैं राग ललित में सितार वादन, कलाकार दीपांकर दत्तो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल इन राग ललित. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग दीपांकर दत्ता. Accompanying on the tabla, Rudra Narayan Kalyani. Now, listen to a sitar recital in Rag Lalit by your artist Dipankar Dutta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे दीपांकर दत्तो। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रुद्र नारायण कल्याणी। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार सत्यव्रत चट्टोपाध्याय।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग ललित बाय आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग दीपांकर दत्ता। Accompanying on the tabla, Rudra Narayan Kalyani. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a tabla recital in Teen Tal. Our next artist, Satyabrat Chatterjee. Accompanying on the harmonium, Devashish Adhikari. Now, listen to a tabla recital in Teen Tal by our artist, Satyabrat Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप 3 ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन 3 ताल बाय योर आर्टिस्ट सत्यव्रत चैटर्जी, एकम्पानिंग ऑन द हारमोनियम देवाशीष अधिकारी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

शास्त्रीय गायन। संध्या काथवटे अपने गायन का प्रारंभ पीलू ठुमरी से कर रही है। बोल बरसन लागी बदरिया पिया बिन लागी ना मोरा जिया। दिस इज रागम डीटीएच चैनल एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय संध्या काथवटे। शी प्रेजेंट्स पीलू ठुमरी। बोल बरसन लागी बदरिया पिया बिन लागी ना मोरा जिया।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संध्या काथोटे का उपशास्त्र.

ये थी पीलू ठुमरी। संध्या काथवटे अब प्रस्तुत करती है मिश्र भैरवी ठुमरी, बोल डारो ना डारो मोपे रंग सुनो सुनो। दैट वॉज पीलू ठुमरी। संध्या काथवटे नाउ

ये थी मिश्र भैरवी ठुमरी। आप सुन रहे हैं संध्या काथवटे का उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं नीलेश जाधव, सारंगी पर संगति कर रहे हैं उस्ताद फारूक लतीफ और हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं विनोद पड़गे। अपना गायन जारी रखते हुए संध्या काथवटे अब प्रस्तुत करती है मिश्र खमाश ठुमरी, बोल बाली उमरिया लरकैया। You are listening to light classical vocal recital by Sandhya Kathavte. She is accompanied on tabla by Nilesh Jadhav, on sarangi by Ustad Farooq Latif and on harmonium by Vinod Padge. Continuing her light classical vocal recital, Sandhya Kathavte now presents Mishra Khamaj Thumri, Bol Bali Umariya Larkaiya.

ये थी मिश्र खमाश ठुमरी। संध्या का थोटे अब प्रस्तुत करती है किरवाणी ठुमरी। बोल तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे। दैट वॉज मिश्र खमाश ठुमरी। संध्या काथवटे नाउ प्रेजेंट्स किरवाणी ठुमरी। बोल तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे।

उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबर संगति कर रहे थे नीलेश जाधव, सारंगी पर संगति कर रहे थे उस्ताद फारूक लतीफ और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे विनोद पड़गे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज किरवाणी ठुमरी। यू आर लिसनिंग टू लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय संध्या काथवटे। शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय नीलेश जाधव, ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूक लतीफ एंड ऑन हारमोनियम बाय विनोद पड़गे। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीट चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित का गाया राग भोपाली. मध्य लय ख्याल छप ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present for you a vocal recital by Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit. He first presents Rag Bhopali, in which you will hear a composition set to Madhyalay Jhaptal, followed by a composition set to Dhrut Teental. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Ghanshyam Sisodia.

0: अभी आप पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित का गाया राग भूपाली सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने। और लीजिए अब सुनिए राग शंकरा। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने।
1: दैट वॉज राग भूपाली कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit next presents Raag Shankara, in which you will hear the Vilambit Taal set to Tilwara Taal, followed by another composition set to Drut Teen Taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Ghanshyam Sisodia.

Sasani da bama gari ga ni ni da bama ga da ni ni.

Pada pama gama pada.

Sari,

Come on.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम DTH चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुने पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी वादन। प्रस्तुत है राग पूरिया, विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: रागम 24/7 DTH Anytime Indian Music. Listen to Hindustani Classical Flute Recital by Pandit Nityanand Haldipur. Presenting Rag Puriya, Vilambit Gat set to Ektal and Drut Gat set to Teen Tal.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग पूरिया सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सदानंद नायमपल्ली। अब सुनिए पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत, मध्यलयगत झपताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You're listening to Rag Puriya by Pandit Nityanand Haldipur on flute. Accompanying him on tabla was Pandit Sadanand Nayampally. Continuing the concert, now listen to Rag Hemant on flute by Pandit Nityanand Haldipur. Madhyalaygat set to Jhaptal, Drutgat set to Teental.

0: अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे ओंकार गुलवाड़ी। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वाज ओंकार गुलवाड़ी। This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको सुनवाएंगे राग जौनपुरी पर शहनाई वादन. कलाकार हैं तपन नट्टा. इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रुद्र नारायण कल्याणी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen to a Shehnai recital in the rag Jaunpuri. Our artist is Tapon Notto. Accompanying our artist on the tabla is Rudra Narayan Kalyani.

0: ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी हम आपको सुनवाएंगे राग परमेश्वरी पर गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार, तबले पर संगत कर रहे हैं प्रशांत दे रॉय।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to a guitar recital in the rag Parmeshwari. Our artist is Rhythm Sarkar. Accompanying our artist on the tabla is Prashanto De Roy.

0: अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत राग परमेश्वरी पर रिदम सरकार का गिटार वादन सुन रहे थे। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a violin recital in the rag Maj Khamaj. Our artist this evening is Rashmi Chakraborty. Accompanying her on the tabla is Raghunath Nondi. Listen now to the rag Maj Khamaj, our artist Rashmi Chakraborty. Listen now to the rag Maj Khamaj, our artist Rashmi Chakraborty.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज प्रस्तुत है तबला एकल वादन वादक कलाकार है मुन्ने खां सबसे पहले आप तीन ताल प्रस्तुत करेंगे आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं जय शंकर

अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर तीन ताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया तबले पर एक ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं जय शंकर।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे मुन्ने खां का बजाया तबले पर एक ताल। आइए अब सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं चतुर लाल। सबसे पहले आप आलाप जोड़ झाला प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात विलंबित बंदिश जो कि तीन ताल में प्रस्तुत करेंगे।

24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अकबर खां का बजाया सरोद पर राग चंद्र नंद। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन। कलाकार हैं सरदार खां, राग है जौनपुरी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। संगत कलाकार हैं तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल। नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सारंगी रेसाइटल बाय सरदार खां। द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी। द एकॉम्पैनिमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला।

अब आप सुनेंगे सरदार खां का सारंगी पर बजाया राग गांधारी, तबले पर संगत की है हफीज खां ने। नाउ लिसन टू द राग गांधारी बाय सरदार खां ऑन द सारंगी। तबला अकॉम्पनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हफीज खां।

आप सुन रहे हैं सारंगी वादन, कलाकार हैं सरदार खां। यू आर लिस्निंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे दादरा धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स अ दादरा धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी सारंगी वादन, कलाकार थे सरदार खां, संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सारंगी रिसाइटल बाय सरदार खां। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

ಮಗುನ ಸಿರಿವಲಯು ರಂಗಪುರಿ ಕರಿಗೋ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी। ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय रफीउद्दीन साबरी। प्रतीक चौधरी फर्स्ट प्रेजेंट्स राग गुर्जरी तोड़ी।

0: अभी आप सुनिए प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग गुर्जरी तोड़ी। प्रतीक चौधरी कंक्लूड्स सितार रिसाइटल विद राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

Sabaniza, Sabaniza, Sabaniza, Sabaniza, Sabaniza.

neighbor,

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं एक मराठी पारंपरिक भक्ति रचना से। स्वर है शाहिर मनोहर विठ्ठल वलंजू और सहकारी।

शाहिर मनोहर विट्ठल वलंजू और सहकारियों के स्वर में यह पारंपरिक रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पूर्णिमा पटवर्धन से संत तुकाराम महाराज की ये मराठी भक्ति रचना।

पूर्णिमा पटवर्धन के स्वर में संत तुकाराम महाराज की मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये रचना, सीताराम कहो राधे श्याम कहो।

घनश्याम वासवानी के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना।

राधिका सूद नायक के स्वर में संत ब्रह्मानंद की ये रचना अभी आपने सुनी। संत कबीरदास की एक रचना प्रस्तुत है, स्वर है विजय सिंह का।

विजय सिंह के स्वर में संत कबीरदास की रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं एक सिंधी भक्ति रचना। स्वर है जय श्री बत्थीजा का।

जय श्री बथीजा के स्वर में ये पारंपरिक सिंधी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं ओंकार प्रभुघाटे से ये मराठी भक्ति रचना।

ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।